0: अब मैं लता की तारीफ करूं? ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है।
1: हमें वो पुराने दिन, जैसे लता ने कहा कि पुराने दिन याद आते हैं कि हम जब ट्रेन में सफर करते थे तो ये भी चली जा रही थी और मैं भी चला जा रहा था। नहीं, ये हमें पहचाने ना, हम इन्हें पहचाने। ये हमें देख रही थी, मैं भी इनको देख रहा था। और फिर वो उतरी एक जगह, बॉम्बे टॉकीज जाना था तो ट्रेन से उतरी, तो मैं भी वहीं उतरा क्योंकि हमारे भाई की कंपनी थी भाई, और वहां पहली मरतबा लता जी गई। तो वो मुझे देख रहे, मैं इनको देख रहा हूँ। वो तांगे में बैठी, मैं भी तांगे में बैठा, तो मेरे को देखती है। अब वो तांगा चला तो मैं भी चला साथ में, दोनों तांगे एक जगह पहुंचे बॉम्बे टॉकीज। फिर वो उतरी तो फिर मुझे ही देख रही है, कौन आदमी है वो, समझ में फॉलो कर रहा हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा मैं भी सीधा अभी सीधे जाके वहाँ खेमचंद प्रकाश जी जो हमारे गुरु जी थे वहाँ जाके बैठ गई। तो कुछ बोला होगा कि देखिए ये कब से चले आ रहे पीछे कौन है, तो खेमराज जी ने बोला करे बेटी ये किशोर है, अशोक का छोटा भाई। तो वहाँ हम लोगों की मुलाकात हुई।

0: को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। This is the powerful being.
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने एकताइत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

किसी ने खूब कहा है, अच्छी बातें पढ़ने देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक सुशील, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो शून्य से 90.4 आवाज तुम चाहो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहां यहां यहां ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया,

0: से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
1: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई अचीव दिस।
0: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो यू सी व्हेनेवर दैट, नो इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
1: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
0: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, वट एवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग। साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीजें हमें जीवन में मिली हैं, लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती। See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना है, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी
1: अगर ये नहीं हुआ
0: तो। अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है, फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा

0: कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती.
1: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ. अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस, बीमारी को ठीक करते हैं. ख्वाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा. और अगर आज उसको ठीक नहीं किया, तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे, सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे. सी, हम क्यों कल के बारे में सोचते, क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पर डिपेंडेंट है. तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी. एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियां कल बहुत अच्छी हो जाएंगी. जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए. वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माई नेक्स्ट थॉट विल ऑटोमेटिकली बी इन पेन, देन द नेक्स्ट थॉट विल ऑटोमेटिकली बी इन पेन. एंड दैट्स वाई वी से इफ टूडे इज इन पेन एंड आज उसको एड्रेस नहीं किया, तो tomorrow will automatically still be in pain. आप कितना भी सोचते जाओ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बाहर अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो फिर भी दर्द क्रिएट होगा.
0: तो ये कहा जाता है कि सपनों में रहना चाहिए या सपने लेने तो चाहिए कम से कम. तो अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि whether it's a right personality, right way of
1: looking. Escaping from the present. What is, you know, फैंटिसाइजिंग बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में, एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट, तो हाउ फार वुड दैट बी बेनिफिशियल फॉर मी. अगेन मैं एनर्जी, मैं अपनी वो थॉट पावर यूज कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीज को क्रिएट करने में जो कि मेरे कंट्रोल में
0: है ही नहीं.
1: मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये वाला पल है और इस पल में मेरी स्थिति, ये मेरे कंट्रोल में है, इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं.
0: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो, क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
1: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा,
0: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
1: खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी. लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी, तो कल भी मेरी मानसिक स्थिति कैसी होगी.
0: और वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो
1: चुका. कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी, अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. समवन वेरी ब्यूटिफुली सेड एट द एंडिंग फेज ऑफ देयर, यू नो, दिस पर्टिक्युलर बर्थ, they said I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. Hum pure jeevan bitate hain un baaton ke bare mein soch ke chinta karke jo actually hui nahi. Jab wo hogi tab dekhenge na. Why do I create it beforehand? To fir hum kehte main isliye chinta karta hu because I care. I worry because I care. To humne worry aur care ko jod diya. Care to pyar hai, sneh ki shakti hai, aur worry फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
0: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
1: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक
0: स्टिमुलेंट
1: है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी recognition, auron ka approval, auron se recognition. Sometimes it could be just the realization, ho gaya, ye mere se ye bhi ho gaya. Ya sometimes it is kaam to karte hi jana hai, kyunki usi se mujhe khushi milti hai. To wo kya karte hai, apna set karte jate hai. You know, tick, checklist hoti jati hai. Ye hua, achieve kiya. Jis pal achieve karte hain, to ek relief experience hota hai. Chalo, ye bhi ho gaya. Ye relief hai, ye khushi nahi hai. पर ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी एवरी टाइम, नॉट फियर में या इनसिक्योरिटी में या एंटिसिपेशन में नेक्स्ट क्या होगा, या ये भी करना है क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी. तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट. उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है. अब ऐसे लोगों के जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, दे अचीव अलॉट, क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है. लेकिन खुशी दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स that they know best ki unka, kyunki wo jo puri yatra hoti hai from one achievement to the next achievement wo kafi
0: usme kafi wo jo fear of you know losing and then jo mere paas hai wo bhi chhut jayega ya wahan tak pahunch jaunga tab. Wonderful. I think
1: kahin na kahin unki khushi us achievement par bahut dependent ho jati hai, you know, kyunki wo ek sanskar ban gaya.
0: Jab wo nahi mil raha hota tab tak aise rehte hain, aise ho jate hain,
1: aur us achievement ko pane ke liye वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. दिस इज वेर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, चाहे वो क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स. एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आर डिजायर्स. एवरी वन, वी ऑल से के छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है. आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा. आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी. आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल. आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम, और टाइम मिल जाए ना मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती, और कई बार जो पूरे भी होती जाती वो हमारी डिजायर, लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
0: और बड़ी होती जाती,
1: और भी लंबी होती जाती, क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सटल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, I that self will become complete. You know, when I get this more from you, I will become complete. I will become contented. Raj Yoga हमें ये सिखाता, I the self
0: is already
1: cannot be complete by anything outside. I am already complete.

0: getting attached to something of the future. More important would be, अभी अपना ध्यान रखते जाएं, एक तो अंदर और एक तो बाहर काम कर रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाएं, एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा, ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है, एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की। लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया तो हम इतने कमजोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस। सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं। ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू इस पूरी सीरीज में हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहे, ताकि कुछ भी हो जाए आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल। अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है।
1: तो अगर तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम ऑल्सो, सो वॉट एनर्जी।
0: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दें, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा एक्सपेक्टेशन बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन रखी लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट। सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें लेकिन लिविंग इन द
1: प्रेजेंट,
0: ये नहीं ये होगा तो खुशी मिलेगी। यू नो क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है,
1: उसी
0: किसी तरह वो गोल पूरा हो जाए।
1: एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर।
0: नहीं, और क्या होता है वो गोल को, क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे। नाउ इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रिल, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है। दिस इज हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी, दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है। तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू एंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
1: वो अच्छा,
0: वो अच्छा होने वाला है। क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूं अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वो ही एनर्जी वापस आने वाली है। सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है। ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
1: गुड, वेरी गुड,
0: लाइट लाइट। आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए, लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड। हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो सीरियस हो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या। एक एक पल को जीते जाए प्रेजेंट में, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें, आज में भी हर पल को देखते जाएं, तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है।
1: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी, सपोज आज मैं ठीक हूं लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूं। यू नो कई बार क्या होता है, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को।
0: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं।
1: अब
0: क्या होगा, अब क्या, एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी। ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किसमें वेस्ट हो जाती है? हम कहते ना एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म, क्यों? सारी एनर्जी किसमें हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा, सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
1: पढ़ाई, हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है। हर बार कोई सिचुएशन आते ही हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं, तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। शिवानी थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई बात कोई सवाल है या तो फोन

0: या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
1: हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org।
0: अब इतनी में ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी।

कंप्यूटर कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ಸಮಸುರ ಬಂದಿತು ಕೃಪಾ

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. जिंदगी जीते जीते सचमुच एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहां हीलिंग की जरूरत थी, जहां मन करता था कि किसी न किसी तरह जो मुश्किलें आ रही हैं वो ठीक हो जाएं, और उसका प्रोसेस ये समझ में आया, मेडिटेशन या ध्यान, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई, और फिर ये भी तलाशने की कोशिश की कि क्या है ऐसी बात, क्यों हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। जब एक बार उन कारणों को जान लिया तो फिर उन्हें दूर करना भी अपने ही हाथ में था। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर तसल्ली से और अच्छी तरह से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन कैसे की जाए, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह है रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। बिल्कुल क्लियर है, बहुत से हमारे दर्शक जो हैं कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट हो रहा है काफी टाइम से, ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है जब समझ ली मेडिटेशन का तो उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान है कि लगता ही नहीं है ना। कई बार वही थॉट्स वेवर होते जाते हैं, मुश्किलें आती जाती हैं। एक बार आज इस पूरी कड़ी में हम ये साथ मिलकर तलाशते हैं कि कैसे करें ध्यान।
1: सबसे पहले शायद हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे मेडिटेशन की आवश्यकता है, एंड रियली पुट इट डाउन कि कौन सी चीज आप अपने अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं जिसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक उसकी तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है या जो एंथुजियाज्म है वो बिल्डअप नहीं होगा। हम दो दिन ट्राई करेंगे फिर गिव अप कर देंगे, कोशिश करेंगे लेकिन और ही थॉट्स में उलझे रहेंगे क्योंकि हम क्लियर होकर नहीं बैठे हैं तो कि हमें क्या इसकी जरूरत है, और दूसरा इसको करने से मुझे क्या चाहिए। ड्यूरिंग द डे आई कैन सी कि मेरे वूंड्स कहां पर हैं, कौन सी चीजें जो मुझे थोड़ा सा दर्द थोड़ा सा दुख अनुभव कराती हैं, औरों की नहीं। अगेन इम्पोर्टेंट इट्स हियर, तो ये नहीं देखें कि ये मुझे दर्द, लेकिन मेरे अंदर के कौन से संस्कार हैं जो मुझे बार बार तकलीफ देते हैं, जिनको मैं कोशिश करती हूँ फिनिश करने के लिए तो वो थोड़े दिन के लिए फिनिश हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से फिर इमर्ज हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर देती है, वो भी जड़ से, मूल एकदम रूट से जैसे उसको उखेड़ देगी। एंड जो चीजें आज तक हम समझते आए कि ये मेरी आदत है ये नहीं चेंज हो सकते, वो चेंज हो जाती है।
0: हो ये रहा है एक्चुअली कि समझ में तो आ रहा है कि यही चेंज कर, क्योंकि जैसे ही ज्ञान हमें मिला है तो ये समझ में आ गया कि ये चेंज करने ही पड़ेंगे और चेंज मैं खुद को ही कर सकता हूँ।
1: तो वो एक बार क्लियर आ गया कि मुझे चेंज करना है, एंड दिस इज द टेक्निक जो इसको जड़ से चेंज कर सकता है। नाउ व्हेन आई टेक आउट टाइम टू सिट आई विल रियलाइज कि मेरा वो टाइम कितना वैल्यूबल है। एक तो हम वी आर सो शॉर्ट ऑफ टाइम सारा दिन में, तो अगर मैंने 15 मिनट निकाले हैं या आधा घंटा निकाला है तो मेरा वो आधा घंटा कहीं ऐसा न हो कि वो ही ऑर्डिनरी थॉट्स में चला जाए जो वैसे भी सारा दिन चलते हैं। इट्स लाइक आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माई सेल्फ एंड विद गॉड फॉर हाफ एन आवर, आई डोंट हैव मोर टाइम देन दैट, एंड देन आई डिडंट मेक यूज ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो ये तो अपने साथ बहुत चीटिंग हो गई। तो जब बैठते हैं करने तो सबसे पहले बैठने से पहले जो अपनी मेंटल प्रिपरेशन होती है, या कहीं रात को सोने से पहले जो अपनी मेंटल प्रिपरेशन होगी, टू टेल माई सेल्फ कि कल सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है
0: और क्या डिस्कस करना है।
1: जैसे अगर किसी बड़े व्यक्ति से अपॉइंटमेंट हो तो हम कभी लेट नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे एक बात याद आती, कुछ दिन पहले एक बहन ने फोन किया बैंगलोर से और वो कहती मुझे बात करनी है, एंड आई वाज इन समथिंग एल्स। तो मैंने कहा बहन बाद में बात करते हैं, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। कहती मुझे सिर्फ 5 मिनट दो बस। आई सेड चलो 5 मिनट। शी टुक दोस 5 मिनट्स एंड उसने 5 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं लिया। 5 मिनट में उसने अपनी 4 प्रॉब्लम्स पूछ ली। शी वाज सो

0: कोई भी प्ले देखने जाएं या मूवी देखने जाएं तो उसमें तो हर तरह के पार्ट होते हैं, बट वी फील के हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, दैट मेक्स द मूवी इंटरेस्टिंग। अगर उस मूवी में सब लोग परफेक्ट वाला रोल प्ले करें तो वो मूवी का तो मजा ही नहीं है। तो जब हम ऑडियंस में बैठकर देखते हैं हमें वो मूवी कितनी अच्छी लगती है, तो यही अगर हम अपने जीवन में भी ऑडियंस में बैठकर देखें या ऐसे होकर देखें, एवरीबॉडी इज प्लेइंग द पार्ट एंड यू नो कॉन्शियसली वो थॉट क्रिएट करें कि हरेक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है
1: वो परफेक्ट कर रहा है,
0: उसको वो ही रोल मिला है।
1: एक रियलाइजेशन हो जाता है कि जस्ट अ पार्ट, आत्मा तो हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा तो इतनी सुंदर है, बट बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग वी डोंट स्टार्ट हेटिंग द विलन।
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट हेट द विलन, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द एक्टर इज डिफरेंट एंड द रोल इज डिफरेंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। अब सोल कॉन्शियसनेस हो तो ये समझ में आ जाए आत्मा एक्टर है और रोल वो है जो इस समय स्टेज पर प्ले कर रही है। और एक्टर कैसा है, एक्टर तो ब्यूटीफुल है, एक्टर प्योर है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, लेकिन हमने एक्टर को रोल के साथ मिक्स कर दिया तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो उनका रोल है अभी के लिए वो जो कर रहे हैं।
1: लाइक देन वी कैन एक्चुअली सी आवरसेल्व्स आल्सो, आई कैन एक्चुअली विजुलाइज इट।
0: सो वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग एज वी आर। जो एक्सेप्टेंस की बात है वो यहाँ से बैठकर एक्सेप्ट करना इजी है, उलझे जब होते हैं उसके अंदर तो एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं। तो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं वी कैन रियली प्रिपेयर दिस, क्योंकि ये प्रेपरेशन हमें सारा दिन में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि मेडिटेशन मीन्स हर एक थॉट जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती है एंड वो फिर सारा दिन में हमारे ऊपर वर्क करेगी। तो स्टेज पर एक्टर्स को देखें एंड गिव योर सेल्फ द थॉट कि हर एक जैसा कर रहा है ही इज डूइंग हिज पार्ट वेरी वेरी वेल। किसी को भी चेंज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को बताना होगा, इनमें से किसी को भी चेंज की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, जब हम साक्षी होकर देखेंगे तो हमें भी उनका पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपने जजमेंट करना बंद कर दिया और उनको समझना शुरू कर दिया। जब यहाँ होते हैं प्ले में तो जजमेंटल बन जाते हैं और जब साक्षी होकर देखते हैं तो एम्पथी आ जाती है, समझ में आता है कि व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई आर दे सेइंग व्हाट दे आर सेइंग। तो उससे क्या होगा, जब मैं अपनी माइंड की प्रिपरेशन उस तरह कर लूं तो सारा दिन में वो मुझे अफेक्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और वो जैसा कर रहे हैं ठीक।
1: इनफैक्ट एवरी टाइम वी विल इंटरेक्ट और कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया, आई थिंक द ड्रामा कैन कम बैक टू अस।
0: एक बार मैंने आउटर वर्ल्ड से डिटैच हो गया, अब मुझे इनर वर्ल्ड से